सरगम के सभी श्रोताओं को इंदु का नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। शायद आपने गैस कर लिया हो आज का टॉपिक क्या है। आई लुक्ड एट यस्टरडे, आई वाज सिटिंग इन द गार्डन एंजॉयिंग ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड आई थॉट एक्सक्यूज मी टाइम टू डू अ सॉन्ग ऑन फ्लावर्स। फूल बहुत खूबसूरत हैं, इस टाइम बहुत फूल खिले हुए हैं। But then I looked outside today and it looks like it's going to be overcast day. Excuse me. चलिए ऐसा करिए, आप गाना सुनिए। I'll be back with more announcement after this.

And I'm back. I was just saying कि फूलों के इतनी खूबसूरत इस टाइम पे फूल खिले हुए हैं. मौसम थोड़ा आज नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा धूप वाला है या बहुत बारिश नहीं होगी, लेकिन फूल तो हैं ही. एंड लेट्स इन्जॉय ऑल द इतने खूबसूरत गाने हैं फूलों पे. और मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर ये हिंदी गाने नहीं होते तो हमें ये रोमांटिक गाने सुनने को कैसे मिलते. फूल को महारानी बना दी, रानी बना दी, गुलबदन बना दिया, इट्स लॉट ऑफ थिंग्स लाइक. खूबसूरत गाने हैं, बहुत मज़ा आता है इन्हें सुनने में. और कई बार क्या होता है कि मैं इन्हें पहले सोचती हूँ एक दिन पहले कि कल को क्या चलाना है. और कई बार होता है कि मेरे पास 5 मिनट होते हैं कि आज मैं क्या कर चलाने वाली हूँ. सो लास्ट नाइट आई वॉज लिसनिंग टू दीज सॉन्ग्स एंड क्वाइट enjoyed them, so I thought you will enjoy as well, hopefully. So चलिए, जो पहला आधा घंटा है ये फूलों के ऊपर गाने हैं. 10 बजे के बाद आपकी फरमाइशें पूरी होंगी. अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप फोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 519-807-4150.

आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम सरगम, जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। आप सुन रहे हैं फूलों के ऊपर कुछ गाने। फूल आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज का विषय है वो है, और उम्मीद करती हूँ कि आपके पास जरूर कोई ना कोई एक फूलों वाला गाना होगा और साथ में कोई और भी फरमाइश हो, आई वुड लव टू टेक इट एज वेल। और फ़ोन का आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। आप मुझे फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप जो भी करना चाहें कर सकते हैं 5198074150। लेट्स कंटिन्यू विद फूलों के सॉन्ग। जो अभी आपने गाना चुना था वो था फिल्म आरज़ू से, और ये जो गाना अगला मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसके बिना तो ये लिस्ट पूरी ही नहीं होती फूलों वाली। और गाना है फूल तुम्हें भेजा है खत्म, इस एवर पॉपुलर फूल सॉन्ग। फिल्म है सरस्वती चंद्र, आवाज़ है लता मंगेशकर और मुकेश जी की। सो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:04 हुए हैं और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 से लेकर 12:00 तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। आज के ये पहले आधे घंटे में मैंने आपको सुनवाए कुछ गाने जो फूलों के ऊपर थे। एज आई सेड कि हर जगह आप देखिए बहुत अच्छा मौसम है, फूल खिले हुए हैं एंड ये गाने तो बनते थे, यू हैड टू डू दिस, सो आई होप यू इन्जॉयड दम एज वेल। इतने गाने हैं कि अगर मैं चाहूँ तो पूरे 2 घंटे में आपको उनको सुनवा सकती हूँ फूलों के ऊपर मेरे ऊपर, लेकिन मेरे पास दूसरी फरमाइशें भी हैं। सो आई वुड लव टू जस्ट हेयर फ्रॉम यू कि आप क्या सुनना चाहेंगे। नंबर है 5198074150। ये जो गाने आपने अभी सुने थे इनको मैंने चुना था, फिल्म प्रोफेसर, शिकारी, ताजमहल, दिल ने फिर याद किया, आरजू, सरस्वती चंद्र, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा से। गायक कलाकार आयरॉनिकली सिर्फ, देखिए अजीब बात है, इतने गाने मैंने चलाए और सिर्फ 4 ही सिंगर थे इसके, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश और किशोर कुमार। चलिए अब समय है अपने स्पॉन्सर्स का एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, और साथ ही एक बार से फिर से आपको फ़ोन नंबर याद दिलाती हूँ 5198074150। हमारे आज के स्पॉन्सर हैं ओंकार फूड्स, इनकी 3 लोकेशन हैं किचन वाटरलू में। देयर यू कैन फाइंड फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस, एवरीडे कुकिंग एसेंशियल्स एंड फ्रेशली कुक्ड मील्स। उनकी लोकेशन है 101 हेजल ग्रैंड ड्राइव किचनर, 500 ग्रैंड फॉरेस्ट बुलेवार्ड इन वाटरलू एंड 1541 हाईलैंड रोड वेस्ट इन किचनर। द नेक्स्ट स्पॉन्सर इज आई व्यू ऑप्टिकल्स, लोकेटेड एट 90 वीबर स्ट्रीट इन लिंकन प्लाजा वाटरलू। दे हैव द लार्जेस्ट सेलेक्शन ऑफ डिजाइनर ब्रांड्स एट ग्रेट प्राइसेज फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज, ग्लासेज एंड सन ग्लासेज। कॉन्टैक्ट अमीन और शमीरा एट 5197252122। And the third sponsor is Indian Spice. This is the South Indian food place. They have all kind of food. I shouldn't say South Indian only, but they specialize in dosa. And their location is 373 Bridge Street, Waterloo, corner of Bridge Street and Devonport. And as I said, they have the best part, the best quality of South Indian meals. So you can contact them, 226-336-9959. They have a July special. If you go to their Facebook page or Instagram page, you will see the price on it. So that is Indian Spice in Waterloo. चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक गाना मैं आपको अपनी पसंद का सुनवाती हूँ। ऑफकोर्स फूलों का टॉपिक है तो गाने तो मेरे पसंद के बहुत बचे हुए हैं, लेकिन आई जस्ट प्ले दिस वन बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल इन्जॉय इट। फिल्म का नाम है सिलसिला एंड इफ़ यू रिमेंबर इट, ये जब गाना शूट हुआ था देखा एक ख्वाब, सो देवर इन नदरलैंड वॉकिंग थ्रू द ट्यूलिप फील्ड्स, सो देखा एक ख्वाब। तो सिलसिला आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप ट्यूलिप्स के फूल्स, हर जगह ट्यूलिप्स खिले हुए हैं और आप उसके बीच में खड़े हुए हैं और ये गाना सुन रहे हैं। सो आपको ज़रूर कोई और गाना भी याद आएगा फूलों के ऊपर, आपके कॉल का वेट रहेगा। लेट्स एन्जॉय दिस सॉन्ग।

आप सबको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आरडी बर्मन के कुछ गीत आपको सुनवाए थे, आरडी बर्मन जी को सेलिब्रेट किया था। एक फरमाइश आई थी, थोड़ा लेट आई थी एंड आई कुडंट डू इट। सो महक आपकी पसंद का वो जो गाना पिछले हफ्ते आपने फरमाइश करी थी, आज मैं उससे प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ और इसके बाद आप सबकी फरमाइशें चलती रहेंगी। गाना है द फिल्म द ट्रेन से, लता मंगेशकर जी की आवाज़, किस लिए मैंने प्यार किया।

ये जो गाना भी आपने सुना, इसका जो म्यूजिक दिया था वो थे राहुल देव बर्मन का, आर डी बर्मन जिन्हें हम कहते थे. और जो अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, उनके ही फादर एस डी बर्मन, जो कि एक्सट्रीमली, दे बोथ फादर एंड सन एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियंस. और एस डी बर्मन इज वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिशियन एज वेल. सो इन कपल ऑफ वीक्स मे बी आई डू अ स्पेशल ऑन एस डी बर्मन, बट लेट्स हियर अ सॉन्ग. तो जो अगली फरमाइश है ये है कोकी की, और इन्होंने फरमाइश करी है इस गाने की, जो कि है फिल्म गाइड से. आवाज़ है एस डी बर्मन की, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ. लेट्स इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड थैंक यू कोकी फॉर रिक्वेस्टिंग. इट्स बीन अ वाइल वी हर्ड दिस वन.

ये जो गाना भी आप सुन रहे हैं ये है फिल्म धुरंधर 2 से. आई हैव नॉट सीन द मूवी बट आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग मैनी टाइम्स. इसकी फरमाइश पिछले हफ्ते आई थी एंड आई कुडंट प्ले इट देन, सो आई होप यू आर लिसनिंग एंड एंजॉय इट.

और जो गाना भी आपने सुना वो था, जैसा कि पहले भी कहा, धुरंधर टू का. आई हैव नॉट सीन द मूवी, गिव मी द समबडी शुड टेल मी द रिव्यू, वॉज इट वर्थ वॉचिंग और नॉट. बट सो फार आई डोंट लाइक टू मैनी वायलेंट मूवीज, सो आई हैवन सीन इट. इसमें जो आवाज़ें थी वो थी ज्योति नूरैन और जैस्मिन सैंडल्स की. चलिए अब चलते हैं एक बार अपने, हमारा समय है आपको स्टूडियो आईडी देने का, अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करने का. आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम सरगम, जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से. जस्ट the song I just played for the person, they thought that I play request until 12. I play request only until 11:30, and then after that it's just half an hour of music without any interruption. So if you need to me to play a request for you, please call me soon, and that would be very helpful. Call me by 11, and then I can easily fit all the songs in the next half hour. चलिए आपको अगर अपनी कोई फरमाइश करनी हो, फ़ोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5198074150. लेट मी थैंक आर स्पॉन्सर्स टुडे, आई व्यू ऑप्टिकल्स. दे हैव बीन सर्विंग आर कम्युनिटी फॉर मैनी मैनी ईयर्स, बेस्ट क्वालिटी इन सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, एंड दे हैव अमेजिंग प्राइसेस ऑन डिज़ाइनर ब्रांड्स. लोकेशन इज 90 वीबर स्ट्रीट, लिंकन प्लाजा, वाटरलू. नंबर इज 5197252122. अगले जो स्पॉन्सर हैं वो हैं इंडियन स्पाइस. दे लोकेटेड एट 373 ब्रिज स्ट्रीट, वाटरलू. साउथ इंडियन डोसा इज जस्ट अ मील, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ. सिंपल इन्ग्रीडियंट्स, टाइम ऑनर्ड मैथड्स, एंड अ टेस्ट दैट कैरीज जनरेशन. दैट्स द मोटो, एंड दे रियली ट्रूली फॉलो इट टू. देयर नंबर इज 226336-9959. तो ये तो बहुत अच्छी जगह है आपको साउथ इंडियन खाना अगर खाना हो. इफ़ यू नीड एनी फ्रेशली कुक मील्स, देन यू हैव टू गो टू ओंकार फूड्स. इनकी लोकेशन है 101 हेजल ग्रैंड ड्राइव, किचनर, 500 ग्लैन फॉरेस्ट बुलेवार्ड, वाटरलू, एंड 1541 हाईलैंड रोड वेस्ट इन किचनर. एंड देयर यू कैन फाइंड फ्रेशली कुक मील्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरी डे कुकिंग एसेंशल्स. तो ये तो थे हमारे स्पॉन्सर्स. इंडिया कैनेडा एसोसिएशन, आई वुड लाइक टू थैंक. दे हैव बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ माई प्रोग्राम, और योर प्रोग्राम आई शुड से, बिकॉज यू लिसन टू इट एंड आई एम हेयर फॉर दैट रीजन. आज का जो टॉपिक था वो था फूलों का. आप कुछ लोगों ने फूलों के गाने कहे, थैंक यू. नहीं भी करें, आई वुड लव टू प्ले एनी सॉन्ग यू वुड लाइक टू हेयर. सो आप अपना जो फरमाइश है भेजिए 5198074150 पर. एक गाना मैं अब आपको सुनवाने जा रही हूँ, सिंस दिस इज़ अ टॉपिक एंड अ ब्रेक, जिसे मैंने चुना है फिल्म प्रेम पुजारी से. आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की. बहुत ही खूबसूरत गाना, मुझे बेहद पसंद है. शौकियों में घोला जाए, यू नो, फूलों का शबाब. सो आप सुनिए, गाने को इन्जॉय करिए, और बताइएगा आपको पसंद आया कि नहीं. एंड लेट्स मूव ऑन विद दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम.

एंड आई होप यू एंजॉय दैट सॉन्ग, आई क्वाइट लाइक इट. जो अगली फरमाइश है वो है मिसेस मलिक लव जी की. उन्होंने कहा कि फूलों के गाने तो बहुत हैं, कोई याद नहीं आ रहा. और मैंने कहा था कि मिसेस लव जी आई प्ले अ सॉन्ग फॉर यू टुडे. सो मिसेस लव जी, ये गाना मैंने आपके लिए चुना है. फिल्म का नाम है सूरज, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी जी की, और गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है. आई होप यू एंजॉय इट.

और आज की अगली फरमाइश जो है वो है शीला की. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एज वेल, उसकी पसंद करी है. रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, ना फिल्म का नाम है पतंग. दिस इज़ राजेंद्र कुमार एंड माला सिन्हा स्टारर, और बहुत ही खूबसूरत गाना है. फिल्म मैंने नहीं देखी, और अगर देखी है तो याद नहीं, बट गाने ऑफ कोर्स आई लिसन टू दिस वन क्वाइट ऑफन. सो शीला, थैंक यू फॉर दिस, एंड लेट्स ऑल एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग.

एंड लेट्स गो बैक टू द रिक्वेस्ट आई हैड फ्रॉम शीला अर्लियर. शीला, आपकी पसंद का जो गाना था रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, हियर इट इज़. आई कुड फाइनली प्ले इट एंड इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम फिल्म पतंग.

was such a sweet song. Sheila, I just have to tell you, I was listening. I have headphones on, obviously, when I'm doing the show. And I was listening to the song, closed my eyes, and I was thoroughly enjoying that. I missed a phone call someone had called. Whoever has called, I'll call you back. But let me do the intro for the radio station right now. हमारे जो ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरगम, ये प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से. इस भाग में आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के कुछ गीत. ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई टॉपिक है, जैसे कि आज है फूल, आप उसी पर गाने सुने. आप कोई भी अपनी फरमाइश हो, आप कभी भी उसको कर सकते हैं. अपनी फरमाइश के लिए नंबर है 5198074150. और अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी. उनकी मदद के बिना ये प्रोग्राम मैं आप तक हर संडे नहीं ला सकती. हमारे आज के स्पॉन्सर हैं ओंकार फूड्स एंड दे हैव 3 लोकेशंस टू सर्व यू. 101 Hazelden Drive, Kitchener, 500 Glen Forest Boulevard, Waterloo and 1541 Highland Road West in Kitchener. अगले स्पॉन्सर हैं IVO Opticals. लोकेशन है 90 Weber Street, Lincoln Plaza in Waterloo. 5197252122. And the third sponsor is the Indian Spice, located 373 Bridge Street, Waterloo, and that is corner of Bridge Street and Devonport. And for South Indian meal, that's the best place to go in town. 226-336-9959. They have July special happening. Go and take enjoy that one. So ye to the hamare aaj ke sponsor. Kyunki topic full tha, ek gana main aapko fir full pe hi sunane ja rahi hu. Ye jo gana hai, ye bahut hi khoobsurat awaaz hai Manna Day ji ki. To ye इस गानों को क्या कहूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये गाना. जब भी मैं कभी भी थोड़ा चुप होकर सुनना चाहती हूँ, कि गाने सॉफ्ट गाने सुनना चाहती हूँ, तो मैं इसको चलाती हूँ. सो लेट्स एंजॉय. फिर कहीं कोई फूल खिला, और आवाज़ है मन्ना डे जी की, और फिल्म का नाम है फिर सुबह होगी.

आशा है आपको ये गाना पसंद आया होगा, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और अब चलते हैं आज की फरमाइश को आगे बढ़ाते हैं, हबीबा जी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गाना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ में। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ. और थैंक यू माही फॉर चेंजिंग द टून ऑफ दिस व्हाट यू कॉल द सॉन्ग्स गोइंग ऑन. ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. एंड मे हाई रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग फ्रॉम फिल्म मर्डर. वॉइस इज अमीर जमाल एंड म्यूजिक इज अनु मलिक.

चलते हैं अगली. एक्चुअली फरमाइश जो गाना रूपी ने किया था वो मैं नहीं ढूंढ पाई. सॉरी रूपी, आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले अ फुल सॉन्ग फॉर यू टुडे. आई प्रॉमिस यू आई विल सर्च फॉर दिस सॉन्ग एंड हैव इट रेडी फॉर यू. इट्स अ पंजाबी सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम फिल्म मामा जी. आई एम एबल टू गेट इट ऑन यूट्यूब विच आई डोंट प्ले ऑन एयर, बट आई एम नॉट एबल टू गेट इट I'm not able to get it on the line where I'm buying the music. So I will search for it and I promise I'll have it for you. But until then, you enjoy this beautiful song. Gana maine jo chuna hai aapke liye wo hai Ye Kali Jab Talak Phool Ban Ke Khile. Aur iska anand lijiye Rupi, and we'll come back with the next part of the program.

और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम, मेरा आपसे बात करने का समय यहीं समाप्त होता है. प्रोग्राम चलता रहेगा 12 बजे तक, प्लीज़ सुनते रहिएगा. कुछ फूलों के गाने बचे हैं, बहुत खूबसूरत गाने बचे हैं, आप ज़रूर सुनिएगा. आई अपोलोजाइज इफ़ आई डेंट फिल ऑल द रिक्वेस्ट. आप अगर देर से आपने फ़ोन किया है, आई सी टू मैसेजेस, आई डू दैट नेक्स्ट वीक, सो माई अपोलोजीज़ फॉर दैट. आज जो टॉपिक रहा फूलों का, बहुत ही खूबसूरत गाने चले और आप लोगों की जो फरमाइशें थी वो भी बहुत अच्छी थी. अब समय है अपने स्पॉन्सर का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी. थैंक यू टू ओंकार फूड्स, इंडियन स्पाइस एंड आई वी ऑप्टिकल्स. धन्यवाद, आपका भी साथ देते हैं, हर हफ्ते गाने सुनते हैं, उससे मुझे भी हौसला मिलता है कि चलिए मैं भी कुछ करूँ, कुछ और कर नहीं पाती हूँ, कोशिश तो मैं करती हूँ बट दिस इज़ ऑल आई कैन डू. तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. आपका आने वाला जो सप्ताह है मंगलमय रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी. अगले हफ्ते 9:30 बजे फिर मिलेंगे कुछ डिफरेंट के साथ. प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा. अब इस भाग में मैं जो, क्योंकि फूलों का जो टॉपिक था, मैं अपनी पसंद का एक गाना आपको सुनवाना चाहूँगी. वैसे तो काफ़ी गाने इसमें मेरी पसंद के थे बट वन ऑफ दिस सॉन्ग इज बीन ऑलवेज बी माई वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की. फिल्म का नाम है बाजार, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की. मूवी तो पसंद मुझे थी ही, ये गाना मुझे बेहद पसंद है. आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू रूपी बेंस. आई कुड नॉट प्ले हर रिक्वेस्ट 2 weeks इन अ रो. रूपी, आई प्रॉमिस आई प्ले इट नेक्स्ट वीक. चलिए आप इस गाने का इन्जॉय करिए इस गाने को, और साथ में जो बाकी फूलों के गाने चलेंगे उनको भी इन्जॉय करिए, और इंदु को दीजिए आज्ञा. नमस्कार.